हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े थे, पूछ रहे थे कौन समुद्र के पार जाए। जामवंत ने कहा पवन समाना का चुप साधिरा बलवाना, उठ खड़ा हो। हनुमान जी एकदम भूधराकार शरीर, बोले क्या करूं, समुद्र को पी जाऊं या लंका उखाड़ करके आ रख दूं।

0: कुमार को मार दिया। सब असुर भय सब भय भीत बाया लड़ते इंद्रजीत की एक से एक प्रचंड प्रहार पर कामना आए कोई भी। जब शस्त्र सारे हार गया तब ब्रह्मास्त्र का ध्यान किया रखने पर मास्त्र का मान बजरंग बली ने खुद को बांध दिया। हुए पेश सामने रावण के बोले सभा के बीच में राम की जय। सारे महल में मच गया कोलाहल। बिना कौन ये जिसको रतनिक दिन है।
1: मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान है। मैं तीनों लोगों के स्वामी अमित तेजस्वी रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत जिनकी भार्या सीता माता को तुम छल से हार लाए।
2: बस बहुत हो चुकी है अनर्गल बातें। इसकी पूछ चला दी जाए।
1: महाराज रावण यम दिन चेतावनी है नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूँ परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं।

रावण श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को स्वयं शंकर विष्णु ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ, यही एक पाप आपकी समस्त शक्तियों और सोने के महलों समेत इस लंका का नाश कर देगा। इस हंसते गाते देश में एक चित्कार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मृत आत्माओं को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: आज तो तुम शहर जाने वाले थे, गाड़ी छूट गई क्या?
1: छूटी नहीं, छोड़ दी। चलती गाड़ी से किसी ने खींच कर उतार दिया मुझे।
0: किसने?
1: तुमने।
0: मैंने? मैंने कैसे?
1: तुम्हारी यही पुकार कल रात मैंने सपने में सुनी थी और इसी पुकार ने चलती गाड़ी से मुझे उतार दिया। जा रहा था शहर नौकरी करने और जो काम करना नहीं चाहता था वो ही करने के लिए राजी हो गया।
0: कौन सा काम?
1: डोली उठाने का। अब रोज यहां आया करूंगा तुम्हारी पुकार सुनने के लिए। क्या हो गया तुमको?
0: मुझको कुछ नहीं हुआ, तुमको हो गया।
1: हा? मुझको?
0: हाँ हाँ तुमको।
1: कौन सा पागलपन देखा तुमने मुझ में? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की?
0: पागलपन नहीं तो और क्या, दिन में मिली और रात को तुम्हारे सपने में आ गई। मैंने तो तुम्हें नहीं पुकारा था, फिर भी मेरी पुकार सुनकर चलती हुई गाड़ी से कूद गए। ऊपर से कहते हो रोज यही पुकार सुनने के लिए आया करूंगा, आखिर क्यों?
1: इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
0: प्यार? बस बस रहने दो, एक बार मिलने से प्यार हो जाता है क्या?
1: यूं तो प्यार बरसों तक भी मिलने से नहीं होता, पर अगर होता है तो एक ही मुलाकात में हो जाता है।
0: अपने दिल के कोरे कागज पर कहानी मत लिखो, वरना ये परेशानी उम्र

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: यहाँ बजता संगीत।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 10 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है। लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।
1: नफ

0: मोनिका।
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।

0: गगन को डर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अए ये नागन डसले तो क्या कहना।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: ये शिव मंदिर है, कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। किसी दिन ले जाऊंगा वहां, भगवान से मांग लूंगा तुम्हें
1: सच
0: सच।

बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
0: नहीं।
1: थोड़ा भी नहीं?
0: नहीं।
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: पप्पू की मम्मी
1: क्या?
0: तू बड़ी

0: मुझको खाना भी तो मिला है आधा, और इस आधे में से भी वो खा गया था।
1: खाना घर में थोड़ा खाने वाला।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंदरा मस्ती। कल रविवार संडे स्पेशल में सुनिए स्टार गीत मस्ती। पार्टिसिपेट कीजिए लाइव शो में और कीजिए दिए गए उल्टे पुल्टे और रिवर्स गानों को सीधा और भेजिए इस मैजिकल नंबर पर जो है 91-35-84-12-32। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बज जाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज शार अंतरा मस्ती का ये मस्ती भरा शो। लेकिन सबसे पहले मेरी पसंद गाने एंजॉय कीजिए। आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम कर देने, क्योंकि आजकल लगता नहीं दिल आजकल

0: बिल्कुल आजकल लगता नहीं दिल आजकल, क्योंकि जब से है प्यार हुआ वही इसलिए दिल नहीं लगता है ना। फिलहाल बहुत से दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे सरफराज जी, सरफू भाई बहुत बहुत वेलकम है सरफू भाई आपका, और उनके बाद है नाहिद अंसारी जी, वेलकम सलाम वेलकम है नाहिद जी आपका भी, और बिट्टू कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है बिट्टू कुमार जी, और अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है अशोक देशमुख जी, और सर्वजीत सेठी जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: अमन सर जी नमस्ते,
0: नमस्ते।
1: मैं सर्जी सेठी फाजिलका पंजाब से, कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हम भी अपने स्थान पर ठीक हैं, हम भी आपके कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं।
0: बहुत बहुत वेलकम है आपका,
1: होस्ट कर जो सबको दीवाना बना देगा।
0: धन्यवाद आपका भी सर्वजीत सेठी जी, और अभिषेक तिवारी जी हैं वेलकम है आपका भी, और ज्योति खटवटे जी हैं वेलकम है आपका भी, और दिगंबर सिंह जी हैं, तो दिगंबर जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: हेलो अमन सर जी, हम भी जुड़ चुके हैं आपके रेडियो हॉट स्टार अल्ट्रा मस्ती में।
0: अच्छा जी, बहुत बहुत वेलकम है दिगंबर जी। अरुण मंडल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अरुण मंडल जी। राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, और सर्वेश भगत जी हैं, आदरणीय शैलेंद्र तिवारी सर जी हैं, हमारी नंदनी माँ जी हैं बहुत बहुत वेलकम है, जितेंद्र सिंह जी हैं, और बहुत से दोस्त हैं जो चोरी चोरी चुपके चुपके सुनते हैं उन्हीं का वेलकम है, और हाँ बेस्ट आरजे आरजे सोनी जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और आज से कुछ अंतरा मस्ती के नियम में कुछ यानी कि परिवर्तन किया गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि कोई लिसनर वो अगर किसी काम में बिजी है और वो यानी कि फोन रिसीव नहीं करना चाहता है, तो वो अपने गाने के साथ जो अंतरा मस्ती में वो गाने लिख के भेजता है ना, तो गाने के साथ अंत में वो लिख देगा नो कॉल। अगर वो नो कॉल लिखेगा तो मैं उसे कॉल नहीं करूंगा, सिर्फ मैं उसके गाने को प्ले कर दिया करूंगा। और अगर एक लिसनर से एक बार बात हो रही है तो उनसे दूसरी या तीसरी बार अगर वो उनका नंबर आता है तो मैं उनको दूसरी या तीसरी बार में कॉल नहीं लगाऊंगा। हाँ, अगर वो विनर बनते हैं, अगर उनका तीसरा नंबर कंप्लीट होता है, अगर यदि वो चाहते हैं कि मैं उन्हें कॉल करूं, तो वो लिखेंगे कि मुझे कॉल कीजिए, तो मैं उन्हें कॉल जरूर करूंगा। और भी जैसे कि मैंने आपसे अगले हफ्ते भी कुछ मैंने बताया था, तो बस वो सब चीजें कंटिन्यू रहेंगी, है ना। तो अब प्रोग्राम का आगाज करता हूं सबसे पहले इस गाने के साथ, और इस गाने से स्टार्ट हो रहा है अंतरा।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। तो इस अंतरे में आए जो भी शब्द आप सुनेंगे इस अंतरे में, उन शब्दों से जो गाना आपको याद आएगा वो गाना आप मुझे लिख कर भेज दीजिए 9135841232 पे। सिर्फ आपको व्हाट्सएप करनी है आज।

0: और वैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। सबसे पहले तो नाहिद जी का आ गया है और आरजे वंशिका जी, सेकंड ज्योति खरवर जी, थर्ड बिट्टू कुमार जी हैं, जाहिर खान जी हैं, जितेंद्र जी हैं, आदरणीय शैलेंद्र सर जी हैं, रामकेश जी हैं, भारती पटेल जी हैं और परवेश कुमार जी हैं, संतोष गौड़ जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, गजानंद जी हैं, अशोक देशमुख जी हैं, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं। सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, सीधे कॉल लगाते हैं नाहिद जी को। नाहिद जी आपका बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में। वालेकुम सलाम, और कैसी हैं आप?
1: अपना बताइए।
0: अरे हम तो एकदम चकास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में, एकदम चका चक है।
1: हमेशा तो यही बोलते।
0: हाँ तो और क्या बोले? अब कुछ नया बोलना पड़ेगा मुझे, है ना?
1: कुछ नया सोच के आई।
0: अब कुछ नया इज्जत करना पड़ेगा मुझे, है ना? तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाई हैं
1: आप? कसम खा के कहो।
0: अच्छा मुस्कुरा के कहो, वो वाला। तो ठीक है, और मुस्कुराते हुए सुनते रहिए इस गाने को।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। तो इस अंतरे में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेजिए सिर्फ व्हाट्सएप पे 9135841232 पे। अगर आपको बात नहीं करनी होगी तो जरूर लिखेंगे नो कॉल

और सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया हुआ है आरजे वंशिका जी का, ओके जी। और उनके पास सुनीता गोप जी हैं और ज्योति खटवाड़े जी, जाकिर खान जी हैं, दिगंबर जी हैं, रामकेश जी हैं, राजेश जी हैं, जितेंद्र जी हैं, सर्वेश भगत जी, परवेश जी, संतोष गौंड जी, सर्वेश भगत जी, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज हैं मेरे पास, बहुत से दोस्तों का। और तो

0: जी बहुत बहुत आपका वेलकम है।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते नमस्ते। और कैसी है आरजे वंशिका जी?
1: जी बिल्कुल अच्छी हूँ और प्रोग्राम सुन रही हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है।
0: थैंक यू सो मच। और क्या बात है, तो बहुत जल्दी नंबर लग गया आपका।
1: जी बिल्कुल,
0: ये दूसरा का मतलब इन बार में ही आपने बाजी मार लिया।
1: जी
0: जी जी,
1: कोशिश पूरी करी और कोशिश कामयाब हो गई है।
0: जी बिल्कुल, और हमेशा आप यानी कि फर्स्ट राउंड में ही कोशिश करती हैं, क्योंकि सेकंड राउंड जो होता है वो ऑडियो आप ही बनाई रहती हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो इसलिए क्योंकि आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, चाह कर भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपको सब मालूम है ना कि कौन सा ऑडियो आने वाला है, किस गाने का वो ऑडियो है।
1: मुझे सब उसके आंसर वगैरह सब पता है, इसलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती उसमें।
0: लेकिन इसमें तो कर सकती है कि नहीं? बिल्कुल
1: बिल्कुल, इसमें कर सकती हूँ।
0: हाँ जी, तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई हैं आप?
1: साजन मूवी का गाना है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा ही कसम।
0: ओके, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू सो मच।

और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अंतरा। तो इस अंतरे में आए शब्द से आप मुझे गाने लिखकर भेज सकते हैं 9135841232 यानी 9135841232 में सिर्फ व्हाट्सएप करना है आपको।

0: सनम,
1: बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। बहुत सारे मैसेज भी आ चुके हैं मेरे पास। सबसे पहले सर्वजीत सेठी जी का, ज्योति खटवाड़ी जी का, जाकिर खान जी का, बिट्टू कुमार जी का, सुनीता गोप जी का, जितेंद्र सिंह जी का, राम के जी का, सुरेश भगत जी का, दिगंबर जी का, रवि मौर्य जी का और संतोष इंदौर जी का, भारती जी का, पूजा भास्कर जी का, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेजेज हैं मेरे पास। लेकिन कॉल लगाते हैं सर्वजीत जी को।

0: मुझे पता है आपके साथ फोन रिसीव करने में प्रॉब्लम होता है। अगर आप लिखते हैं कि नो कॉल, तो मैं आपको कॉल नहीं करता, लेकिन आपने नो कॉल नहीं लिखा, इसलिए मैं आपके लिए दोबारा ट्राई करता हूँ, क्योंकि आपका मैं इश्यू समझ सकता हूँ, इसलिए दोबारा मैं आपके लिए कॉल लगा रहा हूँ। जी सर्वजीत सेठी जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। मुझे पता है
1: सर, नमस्ते,
0: कि आपके साथ कुछ दिक्कतें हैं इन फोन रिसीव करने में
1: सर,
0: इसलिए दोबारा मैंने कॉल लगाया।
1: उठाई नहीं गई सर।
0: जी
1: सर, उठाई नहीं गया पहली बार सर।
0: कोई बात नहीं, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, इसीलिए दोबारा कॉल लगाया आपके लिए। ओके, और बताइए।
1: बढ़िया सर, आप सुनिए, कैसे आपकी तबीयत?
0: मैं एकदम चकास बिंदास, फर्स्ट क्लास मजे में, चकाचक हूँ। तो आज अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप सर्वजीत सेठी जी, बता दीजिए।
1: बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, सांसों में तेरी खुशबू के ढेर सर।
0: है, क्या गाना लाए हैं, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
1: ओके सर।

बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं। सबसे पहला सुनीता गोप जी। अच्छा सुनीता गोप जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और रामकेश जी हैं, नाही जी हैं, और सुनील कुमार जी हैं, ज्योति खड़वड़े जी हैं, भारती पटेल जी हैं, जाकिर खान जी हैं, और सर्वजीत शेट्टी जी हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, रामकांत जी हैं, परवेज जी, मतलब बहुत से दोस्त हैं। फिलहाल कॉल लगाते हैं।

0: सुनीता गोप जी और अनामिका जी दोनों का वेलकम है, क्योंकि अनामिका जी का राइटिंग है, मैं समझ सकता हूँ है ना?
1: हाँ सर, मस्त है।
0: बिल्कुल। और कैसी हैं आप?
1: सर
0: आज नेटवर्क काम कर रहे हैं ना?
1: सर अभी
0: जी जी बिल्कुल। अच्छा बताइए, अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई हैं आप? रंग भरे मौसम से रंग चुरा के आए हैं, क्या गाना है, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

और बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ चुके हैं। सबसे पहला जो मैसेज मेरे पास पहुंचा हुआ है भारती पटेल जी का। ओहो क्या बात है भारती जी। ज्योति खटवाड़े जी हैं और सुनील कुमार जी हैं, नाहिद जी हैं, रामकेश जी हैं, रवि महाराज जी, जितेंद्र जी, जाकिर जी, सर्वजीत जी, दिगंबर जी, कुंता बेनी जी और सर्वेश भगत जी, मतलब बहुत से दोस्तों का मैसेज मेरे पास है। सीधे कॉल लगाते हैं हम बिना देर किए हुए भारती पटेल जी को।

0: पटेल जी बहुत बहुत वेलकम है। केम छो मजामा
1: मजामा
0: हाँ हम के मालूम बा मजामा बा। और कैसन बानी रोरा मतलब आप कैसी हैं?
1: बहुत अच्छी हूँ।
0: बहुत अच्छी हैं। और आज क्या बना रही हैं स्पेशली?
1: आज तो कुछ नहीं।
0: कुछ नहीं ऐसे रहना है क्या?
1: बाहर खाना है
0: जी।
1: खाना है बाहर।
0: अच्छा बाहर जाना है। ओहो
1: बाहर सड़की में।
0: अच्छा
1: हमारे गांव में मोहल्ले में खाना है।
0: अच्छा यानी कि कुछ वहाँ स्पेशल है?
1: हाँ स्पेशल है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ओके ओके ओके ओके।
2: और कल मेरी बर्थडे है।
0: अच्छा तो भाई आपको एडवांस में बर्थडे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
2: थैंक यू।
0: ओके तो आज बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन कर आई हैं भारती पटेल जी?
1: मैंने तुझे खत लिखा।
0: नहीं आपने लिखा है मैंने तुमसे प्यार
1: वो
0: किया
1: गाना है। चाहिए
0: तो सुना दो चलिए एंजॉय कीजिए गाना प्ले कर दिया।
3: प्यार किया है इसमें मेरी खता नहीं।
0: अच्छा जी
3: कितना

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। तो इस अंतर में आए शब्दों से गाने लिखकर भेजे मुझे 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे।

और जुड़ चुके हैं मेरे यार जस बरार जी, बहुत बहुत वेलकम है मेरे दोस्त, बहुत दिन बाद आए हैं, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत वेलकम है। और सबसे पहले मैसेज भेजने वाली मेरी नंदनी माँ जी, बहुत बहुत आपका भी वेलकम है। और साथ ही साथ जाकिर खान जी हैं, रामकेश जी हैं, नाहिद जी हैं, बिट्टू जी हैं, ज्योति जी हैं, प्रमोद जी हैं, जितेंद्र जी हैं, रवि महाराज जी, सुनील कुमार जी, दिगंबर जी हैं, बाबूलाल जी हैं, रूपचंद जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, सर्वजीत जी हैं, कुंता बिनी जी, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेजेस मेरे पास हैं, लेकिन मैं कॉल लगाने वाला हूँ नंदनी माँ जी को।

0: माँ जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कैसी हैं आप?
1: बाबू, मैं ठीक हूँ बाबू।
0: मैंने बहुत मिस किया आपको।
1: हाँ,
0: बहुत दिन गायब थी आप।
1: हाँ
0: जी जी,
1: थोड़ा बाहर गई थी बाबू।
0: हाँ, और मैंने बहुत बार मतलब ऑन एयर भी बोला कि माँ जी आप कहाँ हैं, और पापा जी भी गायब थे। हाँ, वो भी नहीं सुन रहे थे।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: तो बाहर गई थी मैं। हाँ,
0: ओके,
1: शादी में गई थी।
0: अच्छा, तो अब सब कुछ यानी कि वहाँ पे मतलब ठीक रहा, यानी कि कुशल मंगल रहा?
1: जी जी, बहुत अच्छे से हो गया, निपट गया सब।
0: चलिए, अच्छी बात है। तो बताइए, अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन लाई हैं आप?
1: तुझे कितना प्यार करें,
0: आए हाय, तुझे इतना प्यार करें, सुनवा दिया।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। इस अंतर में आए शब्दों से गाने लिख के भेजे मुझे 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे।

और वैसे तो बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहला मैसेज मेरे यार जसबरार जी का पहुंचा हुआ है, और उनके बाद हैं ज्योति खटवड़े जी, जाकिर खान जी, नाहिद जी, नंदलाल जी, बिट्टू जी, प्रमोद जी, रवि महाराज जी, सुनीता गोप जी, और मिनेश पटेल जी, सुनील कुमार जी, एंड कुंता बिन जी, सर्वेश बैगा जी, रूपचंद जी, सर्वेश जी, शेट्टी जी, इलिया जी, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेजेस मेरे पास हैं। सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, फिलहाल कॉल लगाएंगे।

0: मेरे यार जसबरार, बहुत बहुत वेलकम, गुड इवनिंग, कैसे हैं सर?
1: गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हो सर?
0: अहो भाग्य हमारे कि आप यहाँ पधारे, क्योंकि एक जमाना हो गया आपसे बातें किए हुए और पता ना कहाँ गायब हुए हैं। ऐसे गायब हुए हैं जैसे मैं बता नहीं सकता कैसे गायब हुए हैं।
1: जैसे गंजे के सिर से मार।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हाँ
1: सर,
0: ऐसे जी
1: काम ही इतना ज्यादा था सर, बिजी बहुत था।
0: अच्छा जी,
1: जी सर,
0: वही ना, बहुत मैंने मिस किया आपको। और आप करीब करीब यानी कि मार्च महीने से गायब हैं और 3 महीने बाद आ रहे हैं।
1: जी सर, जी सर,
0: शायद यानी कि फरवरी से गायब हैं, है ना?
1: हाँ जी,
0: मतलब फरवरी से गायब हैं, फरवरी से।
1: हेलो सर,
0: जहाँ तक हमें है याद, आप मतलब यानी कि फरवरी से मतलब नहीं है?
1: नहीं नहीं नहीं सर, मेरा यहाँ बिजनेस का काम ही ऐसा था कि उसके लिए बहुत बिजी था मैं।
0: हाँ हाँ,
1: इसलिए नहीं अटेंड कर सकता।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए फिलहाल आप आए बाहर आई और बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: थैंक यू सर, आपने इतना इज्जत दिया, मान किया।
0: और आप तो दिल में बसते हैं ना?
1: जब जी जी, तब आप बहुत अच्छे हो, मेरे पास शब्द नहीं रहते आपसे बात करने के लिए। कैसे आपके
0: तो सर जी बताइए, आज अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना आपने चुना है?
1: गाना है सर, जब हम जुदा होंगे।
0: जी बिल्कुल, जब हम जवा होंगे। अभी तो हॉट स्टार में आप पता नहीं कहाँ होंगे।
1: आप तो दिल में है ना?
0: हाँ जी बिल्कुल, धन्यवाद।

ओह माय गॉड, मैं तो बताना भूल गया था कि यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा, तो इस अंतरे में आए शब्दों से गाने लिख के भेजे मुझे 9135841232 पे, यानी 9135844312 पे।

0: राजेश कुमार जी, बहुत बहुत वेलकम है, कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर।
0: क्या बात है जी, एक मैसेज किया और एक ही बार बाजी मार लिया। लेकिन इससे पहले मैं आपका गाना कुछ और देख रहा था। हाँ। आपने चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आपने कोई भी गाना मैं प्ले कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, जो कहिएगा वो प्ले कर दूंगा। हाँ बताइए
1: जी। जी तो कोशिश कर रहे थे ना, तो काम में व्यस्त थे, तो हम कहें जो जो पूरा याद रहेगा वही भेजेंगे, क्योंकि लेट हो जाता है।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार तो आपने एकदम ऑन टाइम भेज दिया है ना। तो बताइए राजेश कुमार जी, आजकल क्या कर रहे हैं आप?
1: बस वही अपना जो काम है शार्पनर वाला, वही
0: शार्पनर बनाने का काम करते हैं
1: जी।
0: बहुत ज्यादा शार्पनर तैयार करते हैं, है ना?
1: हाँ, ये लगभग 1.5 लाख रोज बनता है हमारे यहाँ।
0: ओह माय गॉड, 1.5 लाख रोज बनता है, और खपत कितना होता है?
1: नहीं, उतना डेली का प्रोडक्शन उतना है कि 1 लाख से कम बनना नहीं चाहिए। ज्यादा बनता है तो वो भी निकल ही जाता है, चला जाता है रोज के रोज।
0: ओह माय गॉड, इतना ज्यादा, मतलब यानी के समझिए कि अभी सबसे ज्यादा खर्च एजुकेशन पे हो रहा है ना?
1: जी जी यार, पॉपुलेशन भी इतना है, इतने बच्चे पढ़ते हैं, वो रोज तोड़ देते हैं, रोज फेंक देते हैं।
0: सही बात है।
1: जिनके बच्चे होंगे वो जानते होंगे, वो रोज गायब करके आते हैं। हमारे छोटे छोटे थे तो वो भी रोज आते, पेंसिल गायब हो गया, कटर गायब हो गया, तो मैं दर्जन दर्जन खरीद के रखता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ सकता हूँ मैं। इसीलिए सबसे ज्यादा आप यानी शार्पनर बनाते हैं, है ना?
1: जी जी।
0: चलिए अच्छी बात है। अंतरा मस्ती खेल रहे हैं, और अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाए हैं आप?
1: जी वो गाना है प्यार किया नहीं जाता हो जाता।
0: सच में प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू सर।

और यहाँ से शुरू हो जाता है अंतरा। तो इस अंतर में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिख कर भेजे 9135841232 यानी 9135841232 पे।

और मैसेज भी बहुत सारा आ गया है। सबसे पहले मैसेज हमारे जितेंद्र सिंह जी का है और प्रमोद कुमार जी का, ज्योति खरवड़ जी का, जनन सलोगार जी है, जाकिर जी है, सुनील कुमार जी है, बिट्टू कुमार जी है, नाहिद जी हैं, रामकेश जी हैं, रवि महर जी, परवेश जी, इलिया जी, सर्वेश जी, रविचंद जी, मुन्ना जी, सर्वेश भगत, बहुत से मतलब यहाँ यानी सर्वजीत शेट्टी जी हैं, मतलब बहुत से दोस्तों के हैं और मतलब सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। वो समझ रहे हैं कि आपने भेजा है और मैंने आपका नाम नहीं लिया है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज है, ये फीडबैक, सॉरी ये कॉल लगाते हैं।

0: मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि अगर कोई बिजी है वो फोन रिसीव नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे पहले अपने गाने के आगे लिख दे नो कॉल। नो कॉल अगर वो लिख देगा तो मैं उसे कॉल नहीं करूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ कि नियम अब यानी चेंज हो चुके हैं, दोबारा कॉल आपको नहीं किया जाएगा, है ना। अगर आप एक यानी लिसनर को अगर वो यानी काम में बिजी है तो अपने गाने के साथ साथ वो लिख कर भेज सकता है कि मैं बिजी हूँ, मतलब यानी बिजी मत लिखे, वहाँ लिख दे नो कॉल, मैं उसे बिल्कुल कॉल नहीं करूँगा, उनके गाने को मैं बिना उनको कॉल किए मैं गाना प्ले कर दूंगा। और दूसरी बात यह है कि अगर एक बार से अगर यानी कि किसी से एक बार मेरी बात हो चुकी है, दोबारा उनका नंबर आता है, तो मैं उन्हें कॉल नहीं लगाऊंगा, उनका गाना प्ले करूंगा। अगर उनका और तीसरी बार नंबर आता है और अगर वो चाहेंगे तभी मैं उनको कॉल लगाऊंगा, नहीं तो मैं उनको कॉल नहीं लगाऊंगा। ये सब नियम में चेंजिंग हुआ है कि चूंकि आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे, तो प्लीज अगर कॉल रिसीव नहीं करना चाहेंगे तो पहले लिख दीजिए नो कॉल। फिलहाल मैं किसको कॉल लगा लूं, चलिए हमें दिख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ सामने ये इनको कॉल लगा लेता हूँ, क्योंकि मैंने यानी किनका नाम लिया मुझे नहीं है याद। सुनील कुमार जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है अंतरा मस्ती में। आपको रैंडमली कॉल किया गया है, मतलब आपका नंबर हो ना हो ये मुझे नहीं पता है ना, बस मुझे आप सामने दिखे, मैंने आपको कॉल कर लिया, क्योंकि नंबर किसी और का था।
1: धन्यवाद सर।
0: हाँ, नंबर किसी और का था, हमारे जितेंद्र जी का था, लेकिन उन्होंने हो सकता है वो इस समय बिजी हो और उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, तो मैं पहले ही नियम बना चुका हूँ कि अगर आप कॉल नहीं लेना चाहते हैं अपने गाने के आगे लिख दें नो कॉल, ताकि मैं आपको कॉल नहीं करूंगा, है कि नहीं।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल।
0: ओके, तो बताइए सुनील कुमार जी, और आजकल क्या कर रहे हैं?
1: सर अभी तो वर्क ही कर रहे थे, अभी तो निकले नहीं है कंपनी से, थोड़े हम सोचे कि थोड़ा पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं जहाँ तब निकला जाएगा, क्योंकि रास्ते में आपको पता ही है थोड़ा बिजी हो जाते हैं और गाड़ी उड़ी का है ना, तो इसके वजह से हम माने पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते हैं सर।
0: जी,
1: तो सर एक मिनट, अभी बता रहा हूँ आपको मैंने क्या किया है आपको मैसेज। एक मिनट सर।
0: जी बिल्कुल।
1: हाँ, मौसम की तरह बदल तो ना जाओ।
0: अरे हम बदलने वाले नहीं है जी, लोग बदल जाते हैं।
1: नहीं, है कि नहीं? जी। इंसान को चाहिए सर कि मौसम या किसी भी तरह का अपना रंग ना बदले।
0: अच्छा,
1: मेरी यही राय है जी सर।
0: ओ कोई बात नहीं, फिलहाल गाना प्ले कर दिया, एंजॉय कीजिए।
1: जी, धन्यवाद सर,
0: वेलकम जी।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती। कल रविवार संडे स्पेशल में सुनिए स्टार गीत मस्ती, पार्टिसिपेट कीजिए लाइव शो में और कीजिए दिए गए उल्टे पुल्टे और रिवर्स गानों को सीधा और भेजिए इस मैजिकल नंबर पर जो है 91-35-84-12-32। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: ओके और मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे बिट्टू कुमार जी जो है, वो बिट्टू कुमार जी का आज भतीजी का जन्मदिन है, नाम है उनका सृष्टि। तो जन्मदिन की हार्दिक आपको शुभकामनाएं सृष्टि जी। अब जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। और सबसे पहले मेरे पास जो मैसेज पहुंचा हुआ है वो है दिगंबर जी का पहुंचा हुआ है। सरफराज जी हैं और नाहिद जी हैं, रामकेश जी हैं, गजानंद जी हैं, प्रमोद जी हैं, ज्योति जी हैं, जाकिर जी हैं, सुनीता गोप जी हैं और क्या नाम है इनका, ये कमल शंकर पांडे जी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम है। और सर्वजीत जी हैं, जितेंद्र जी हैं, नाहिद और हमारी नंदनी माँ जी हैं, जसवराज जी हैं और मनीषा शर्मा जी, बहुत बहुत वेलकम है। बहुत मिस किया आपको, पता नहीं आप भी कहाँ गायब थी। और भी बहुत से दोस्तों के मैसेज हैं, मैं सभी दोस्तों का मैसेज शामिल नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए हम सॉरी। सीधे मैं कॉल लगाता हूँ बिना देर के हुए दिगंबर सिंह जी को। दिगंबर जी बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतरा मस्ती में।
2: हेलो अमन जी, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, नमस्कार। लग रहा है बहुत खुश हैं आज, आपका नंबर लग गया
2: लाइन में लगे हुए, ये तो काम ही है सर।
1: जी जी जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ आपके चेहरे की खुशी, वो साफ झलक रही है।
2: हाँ साहब, ये तो है अमन सर जी, अब दिल लगाया तो हटने हटता ही नहीं है, क्या करें।
1: हाँ हाँ, हमें पता है, जब तक यानी कि शुरू से अंत तक प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाए तब तक आप खाना नहीं खाते हैं।
2: ये तो है, वो तो है वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
2: हाँ तो हमारा एक फ्रेंड जितेंद्र जी है।
1: हाँ हाँ,
2: जितेंद्र साहब। ओ मेरी बीवी मायके चली गई।
1: अच्छा, चली गई
2: पतंगा।
1: कोई बात नहीं, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
3: बीवी

वेलकम बैक। और बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। सबसे पहले ज्योति खटवड़े जी, और यहाँ पे नाहिद अंसारी जी, और जाकिर जी, प्रमोद जी, सुनीता गोप जी, मनीषा जी एंड जितेंद्र जी, और इलियास जी, रामके जी, अशोक देशमुख जी, और सुशील जी मोहर, और अभी मोहर जी, सुनील कुमार जी, मतलब कितना दोस्तों का नाम लूं, माय गॉड बहुत से दोस्तों के मैसेज है, बहुत सारे दोस्तों के मैसेज है। फिलहाल कॉल लगाता हूँ मैं बिना देर के हुए ज्योति खटवड़े जी को।

0: ज्योति जी बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतरा मस्ती में। आवाज नहीं आ रही आपकी।
1: नमस्ते जी।
0: और कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: क्या कर रही हैं?
1: खाना बना रही हैं।
0: खाना में क्या बना रही हैं?
1: दही वड़े की सब्जी हमारे मुंह की।
0: दही बड़ा क्या बना रही हैं? दही बड़ा
1: नहीं, वड़े हमारे लास्ट में बनाते हैं वो मुंह के।
0: अच्छा अच्छा,
1: उसकी सब्जी।
0: मुझे लगा कि दही बड़ा बना रही, क्योंकि मुझे दही बड़ा आप समझ गए ना।
1: हाँ।
0: बिल्कुल। तो बताइए, आज बहुत देर बाद आपका नंबर लगा है, मतलब बहुत यानी चुप कर रही है आजकल, क्या बात है? आपका तो नंबर बहुत यानी के बहुत जल्दी आता है।
1: हाँ, लेकिन आज देखो ना, आज लग रही नहीं रहा।
0: हाँ बहुत, मैं उस समय से देख रहा हूँ आपका नंबर मतलब आगे नहीं आ रहा है, यानी पीछे पीछे जा रहा है, मतलब भाग रहा है। कोई बात नहीं, चलिए नंबर आ गया फाइनली आपका। तो बताइए, अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाई हैं आप?
1: वादा रहा सनम।
0: मेरे पास दो है, एक है ड्यूट है अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य का, और एक अकेला अभिजीत भट्टाचार्य का है।
1: कौन सा आपको जो पसंद है?
0: दोनों पसंद है मुझे। एक तो यानी कि उसमें मुझे अकेले गाना होगा जो यानी सोलो है, और उसमें दोनों का यानी कि जोड़ी है। अब जो समझ लीजिए, जो कहिएगा वो मैं प्ले कर दूंगा।
1: डुएट का।
0: अच्छा, डुएट प्ले कर दूं। चलिए सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
1: ओके, थैंक यू,
0: वेलकम।

ओ माय गॉड, मैंने तो समय पे ध्यान नहीं दिया, यानी समय हो चुका है, कोई बात नहीं, अब इस गाने के बाद मैं लूंगा मतलब सेकंड राउंड। फिलहाल इस गाने को तो मैं लेके चलूंगा और देखता हूँ। सबसे पहले मेरे पास मैसेज किन का आया हुआ है सुनील कुमार जी का। सुनील कुमार जी, अच्छा इनको मैंने एक बार कॉल किया था, अब मैं इनका गाना प्ले करूंगा सीधे। और इनके पास से जो मैसेज मेरे पास पहुंचा हुआ है वो ज्योति खटवड़े जी का, जाकिर खान जी का और मिनेश पटेल जी का, राम के जी का, दिगंबर जी का और मनीषा शर्मा जी का, इलियास कैसी जी का और प्रमोद कुमार जी का, सर्वेश भागा जी का, सुनीता गोप जी का, संजय कुमार जी का, रवि मौर्य जी का, पूजा भास्कर जी का, कुंता बेनी जी का, रूपचंद गोयल जी का, सर्वजीत सेठी जी का, सुशील कुमार जी का, नंदनी माँ जी का, बिट्टू कुमार जी का, जितेंद्र जी का, कमल सानी जी का, गजन, मतलब कितना दोस्तों का नाम लूं, माय गॉड, सभी दोस्तों के जवाब बिल्कुल आए हुए हैं। लेकिन फिलहाल ये गाना उनका प्ले कर रहा हूँ। और यहाँ से शुरू होगा सेकंड राउंड।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती। कल रविवार संडे स्पेशल में सुनिए स्टार गीत मस्ती, पार्टिसिपेट कीजिए लाइव शो में और कीजिए दिए गए उल्टे पुल्टे और रिवर्स गानों को सीधा और भेजिए इस मैजिकल नंबर पर जो है 91-35-84-12-32। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बज जाते रहो दिल से। दोस्तों, अब तक आप अंतरे के शब्दों से गाने के बोल लिखकर भेज रहे थे, लेकिन अब आपको अंतरे के बोल से गाने की पहचान करनी है और उस गाने के सही बोल लिखकर भेजने हैं, और साथ ही साथ जो गाना सुनना चाहते हैं उसके बोल भी अपने जवाब के साथ ही लिखकर भेजें इस मैजिकल व्हाट्सएप नंबर पर जो है 91-35-84-12-32।
1: वेलकम बैक। और दोस्तों, मैं बता दूं कि कल सुबह 11 बजे होगा वर्ड मस्ती, और कल के जो 10 शब्द हैं वो है कागज, खत और किताब, लड़का, लड़की और कॉलेज, नाम, आईना, जिंदगी, नजर। इन जो 10 शब्द हैं इन पर से आप एक गाने भेज सकते हैं, अधिक से अधिक यानी 5 गाने प्ले हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक शब्द से 3 गाने जरूर प्ले होंगे। ओके, तो इन शब्दों को नोट कर लीजिए प्लीज। वैसे मैंने स्टेटस लगा दिया है, वहां भी आप देख सकते हैं, और इन्हीं यानी कि शब्दों पर कल 11 से 2 बजे तक का होगा शो, जिसका नाम रहेगा वर्ड मस्ती, और कल है गीत मस्ती का शो शाम 7 बजे कहिए, क्योंकि आजकल मैं 7 बजे ही आ रहा हूँ, इसलिए तो शाम 7 बजे होगा गीत मस्ती का शो। उसमें उल्टे पुल्टे गाने दिए जाते हैं आपको और रिवर्स गाने दिए जाते हैं, आपको उसकी पहचान करनी होती है, तो कल शाम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। फिलहाल यहाँ से शुरू हो रहा है सेकंड राउंड, और सेकंड राउंड के लिए एक में गाना मैं प्ले कर रहा हूँ। इस गाने के जहाँ अंतरा स्टार्ट होगा वहाँ मैं एक सवाल करूंगा, और वहाँ से जवाब आपको लिखकर भेजना होगा 9135841232 पे, यानी 91-35-84-12-32 पे। और बता दो दोस्तों कि अगर अपने जवाब के साथ गाने के बोल जरूर लिखेंगे, अगर आपको कॉल नहीं चाहिए तो वहां पे नो कॉल जरूर लिखेंगे, ठीक है, मैं आपको कॉल नहीं करूंगा। और नहीं वहां पे अगर लिखा होगा, हाँ, अगर जिनका पहले भी यानी कि कॉल कर चुका हूं उनको मैं कॉल नहीं लगाऊंगा, उनका सिर्फ गाना मैं प्ले करूंगा। फिलहाल मेरे पसंद गाने एंजॉय कीजिए, और इस गाने से स्टार्ट हो रहा है सेकंड राउंड।

0: रहा यहाँ पे आज का पहला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, अखियों में तू बस जा, अखियां मैं बंद कर लूं, अखियों में तू बस जा, अखियां मैं बंद कर लूं, पहले इन अखियों से बातें मैं चांद कर लूं, तेरी इन्हीं बातों ने लिया मुझे जीत मितवा।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो

और मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा है महक जी का। महक जी का बिल्कुल यानी सही है, लिखती है कि नो कॉल। अच्छा मैं कॉल नहीं करूंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन उनके बाद है किनका है इनका गलत है इनका भी गलत है। हाँ इनका सही है, यानी सुनील कुमार जी का सही है बिल्कुल, नाहिद जी का सही है, अजय जी का सही है, अजय कुछ जी का, और मनीष पटेल जी का सही है, राजेश कुमार जी का सही है, गजानन जी का सही है, अशोक देशमुख जी का सही है, प्रमोद कुमार जी का सही है, हमें नंदनी माँ जी का सही है, नंदलाल जी का सही है, जाकिर जी का सही है, मनीषा जी का सही है, ज्योति जी का सही है, और बहुत से दोस्तों का सही है भाई। यहाँ पे सुनीता जी का सही है, पूजा भास्कर जी का सही है, भारती पटेल जी का सही है, ये कंवर सिंह जी का सही है, मतलब बहुत से दोस्तों का सही है। तो महक जी गाना प्ले कर रहा हूँ आपका, इंजॉय कीजिए। और हाँ मैं बता दूं कि इसका जवाब

0: लेकिन ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, रही कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए कोई सनम से, रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए कोई सनम से, आ ही जाता है जिस पे दिल, आना होता है हर खुशी से।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना

0: ओके, मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा है मनीषा शर्मा जी का। ओके जी, और नाहिद जी है, महक जी है, रवि महाराज जी है, सुनील कुमार जी है, गजानंद जी है, कुंता बेदी जी है, रूपचंद जी है, जितेंद्र जी है, ज्योति जी है, मतलब बहुत से दोस्तों का मैसेज मेरे पास है, लेकिन कॉल लगाऊंगा मैं सीधे मनीषा शर्मा जी को। मनीषा जी आपका बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती के सेकंड राउंड में।
1: धन्यवाद अमन जी।
0: और कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हैं।
0: और इतना दिन कहाँ गायब थी? हफ्ता दिन से ज्यादा।
1: अभी हम लोग एमपी में हैं, अपने ससुराल में।
0: अच्छा, वही तो मैं सोचूं कहाँ गायब है कि दिखाई नहीं दे रही बिल्कुल।
1: जी जी, शादी ब्याह चल रहा है, घूम रहे हैं इधर उधर।
0: अच्छा जी, यानी इंजॉय कर रही हैं आप। लेकिन आज अंतरम बच्ची था तो आप ज्वाइन हुई है। अच्छा जी।
1: अभी ऊपर छत पे ऐसे बैठे थे, थोड़ी बारिश हो रही थी तो बैठे थे, तो मैं बोली थोड़ा ज्वाइन होते हैं अभी, क्यों पापा जी खाना खाने आने वाले थे, थोड़ा वेट करते हैं तब तक, थोड़ा ज्वाइन हो ले, 10 मिनट का टाइम था हमारे पास।
0: अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है, फिलहाल इसी में आपने बाजी मार भी लिया। बताइए जवाब क्या था गाने का, गाने का बोल क्या था?
1: प्यार दीवाना
0: होता है। और सुनना क्या चाहती है?
1: अखियों के झरोकों से।
0: अखियों के झरोकों, बहुत प्यारा गाना है, बहुत मीठा गाना है।

0: और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा बैर, क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा बैर, हुक्म था मैं जीऊं लेकिन तेरे बगैर। नादा है वो कहते हैं जो, मेरे लिए तुम हो गैर।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना।

और इस बार जो जवाब पहुंचा है वो बहुत ही यानी कि कम दोस्तों का पहुंचा, मतलब यानी कि जो जवाब ज्यादा पहुंचा है वो तो यानी कि गलत है बहुत ज्यादा, लेकिन जिनका सही है मैं उन्हीं का नाम लेने वाला हूं, क्योंकि गलत जवाब बहुत ज्यादा है। सबसे पहले यानी बिंदिया जी का है, और बिंदिया जी अच्छा नो कॉल, ठीक है मैं नहीं कॉल करूंगा, नो प्रॉब्लम। और उनके बाद से है हमारे किनका ये नाहिद अंसारी जी का है, और नाहिद जी के बाद है यानी कि प्रमोद जी का, ज्योति जी का और सुनीता गोप जी का। इतने दोस्तों का सही जवाब आया हुआ है, बाकी सबका गलत गलत गलत गलत। और सही जवाब है तेरे लिए हम है जिए हर, मतलब जो भी है आंसू पिए वगैरह वगैरह वही है। फिलहाल उनका गाना मैं प्ले कर रहा हूँ बिंदिया जी।

0: और ये रहा अगला सवाल,
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: गोरे गोरे हाथों में मेहंदी महकती है, फूल सी कलाई में चूड़ी खनकती है, मौजे जनाब की, मौजे जनाब की, माथे पे चमकती बिंदिया हिजाब की।
3: दोस्तों, आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने की बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

0: और ये चाहेंगी तभी मैं कॉल करूंगा इनको, नो प्रॉब्लम। लेकिन उनके बाद है हमारे जाकिर खान जी हैं, रवि मोहड़े जी हैं, सोनू गौतम जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, प्रमोद कुमार जी हैं, अजय कुछ जी हैं, और नंदलाल जी हैं, गजानन सरकार जी हैं, सर्वजीत सेठी जी हैं, पूजा भास्कर जी हैं, रूपचंद जी हैं, एक साहब और भी हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता है। ये सुजीत प्रसाद जी हैं, सुजीत प्रसाद जी इनके प्रोफाइल में लिखा हुआ है, सुनीता गोप जी हैं, मतलब बहुत से दोस्त हैं। सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है जैसा कि हमेशा की तरह, तो मैं सीधे इनका गाना प्ले करना चाहता हूँ। अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। और ये जो गाने का बोल था, जो जवाब था, वो जवाब था फूल गुलाब का।
1: इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
0: इतना जल्दी हार गई?
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना,
0: बंद करो, बंद करो।
2: बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है।
0: सही बात है,
2: जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: हाँ, अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है।
3: दोस्तों, आपने सुना अंतरा। अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

0: इंसान।
1: और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं। सबसे पहले आरजे सोनी जी का आया हुआ है, और आरजे सोनी जी के बाद मेरे पास पहुंचा हुआ है नाहिद जी का, महक जी का, रवि मोहड़े जी का, सोनू गौतम जी का, जाकिर खान जी का, गजानंद जी का, प्रमोद जी का, ज्योति जी का, सुनीता गोप जी का, सरोजी सेठी जी का, राजेश कुमार जी का, और सुनील कुमार जी का, और मिनेश पटेल जी का, पूजा भास्कर जी का, दिगंबर जी का, सरफराज पटेल जी का, संगीत अम्बुलकर जी का, रूपचंद जी का, कुंता बेनी जी का, और सुजीत प्रसाद जी का, और भी एक साथ पता नहीं क्या नाम है, नाम नहीं पता है, लेकिन बहुत से दोस्त हैं। लेकिन मैं सीधे इनको कॉल नहीं लगा सकता क्योंकि ये बिजी हैं, तो सीधे इनका गाना प्ले कर रहा हूं मैं। और जवाब था कि फूलों सा चेहरा तेरा, बिल्कुल सही जवाब था आपका।
2: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: ओके, और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी, तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी, लेकिन तुझको भी तो नींद ना आएगी। मैं तो मर जाऊंगा लेकर नाम तेरा, नाम मगर कर जाऊंगा बदनाम तेरा। तौबा तौबा फिर क्या होगा।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं इस गाने के जवाब में, और सबसे पहले तो मेरे पास जो आया हुआ है हमारी नंदनी माँ जी का आया हुआ है। ओहो, इनको एक बार मैं कॉल कर चुका हूँ इसलिए दूसरी बार मैं कॉल नहीं लगाऊंगा, सीधे इनका गाना प्ले करूंगा। और सोनू गौतम जी हैं, नाहिद जी हैं, और सुशील कुमार जी हैं, अजय कुछ जी हैं, रवि महर जी हैं, मिनेश पटेल जी हैं, कुंता बेनी जी हैं, सुनीता गोप जी हैं, ज्योति जी हैं, और प्रमोद जी हैं, दिगंबर जी हैं, सर्वजीत सेठी जी हैं, और गजानंद जी हैं, और संगीता अम्बुलकर जी हैं, जाकिर खान जी हैं, एक साहब और हैं, पता नहीं इनका नाम तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या नाम है, नाम इनका देखना पड़ेगा मुझे कहीं। चलिए इनका नाम मैं बाद में इनसे मैं इन्हें पूछ लेता हूँ मैसेज करके। और वैसे भी मतलब इन बहुत से दोस्तों का मैसेज है, लेकिन मैं सीधे अपनी माँ जी का गाना प्ले कर रहा हूँ। मेरे दिल ने जो चाहा मिल गया, लेकिन जो गाना था ओ मेरी महबूबा, ये गाना था।

0: और ये रहा अंतरा।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: दो चार ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे जमाने में बातें होंगी। हो दो चार ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे जमाने में बातें होंगी, बातें होंगी। कि नाम बदनाम तेरा मेरा यार हो जाएगा।
3: दोस्तों, आपने सुना अंतरा। अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, तो सबसे पहला जो मेरे पास मैसेज पहुंचा है वो आनंद जी का है। लिखते हैं कि जवाब है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो आनंद। और मेरे पास मैं जो गाना सुनना चाहता हूँ वो कह दो कि तुम मेरी हो वरना, फिल्म मैंने कि तेजाब का गाना सुनना चाहते हैं, नो कॉल, मैं कॉल नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, मैं कॉल नहीं करूँगा, लेकिन आपका सबसे पहले मैसेज आया हुआ है, मैं ज़रूर शामिल करूँगा। और नाहिद जी हैं, रवि महर जी हैं, सोनू गौतम जी हैं, और जाकिर खान जी हैं, सरफराज जी हैं, और दिगंबर जी हैं, गजानंद जी हैं, और प्रमोद जी हैं, ज्योति जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, अजय कुछ जी हैं, और कुंता जी हैं, मतलब बहुत से दोस्तों के मैसेज हैं मेरे पास। सीधे मैं गाना लगाता हूँ इनका, आनंद जी का, जीना नहीं मुझे मरना।

0: और सॉरी यहाँ पे नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं सुनवा रहा हूँ अगला अंतरा।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: जिंदगानी के 100 साल है, एक बार नहीं 100 बार कर ले, जी भर के तू मुझे प्यार कर ले, तेरा जादू चल गया ओ जादूगर, टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
4: एक वादा कर लो,
0: वादा वादा, ना ना कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।

0: बहुत से दोस्तों का ये कहना है कि वो सुन नहीं पाए हैं, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा अंतरा को प्ले करता हूँ।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: जिंदगानी के 100 साल है, एक बार नहीं 100 बार कर ले, जी भर के तू मुझे प्यार कर ले। तेरा जादू चल गया ओ जादूगर, टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल।

वैसे इन पहली बार में ही मेरे पास बहुत सारे जवाब आ चुके थे, और सबसे पहला इन बिंदिया जी का जवाब मेरे पास आया हुआ था, और बिंदिया जी के पास से आया था जाकिर खान जी का, नाहिद जी का, रवि मार जी का, सुनील कुमार जी का, पूजा भास्कर जी का, और भी बहुत से दोस्तों का मैसेज अभी आया हुआ है, लेकिन अब तो इन पहले ऑलरेडी आ चुका है मेरे पास, तो सीधे मैं इन बिंदिया जी गाने को प्ले करता हूँ, और जवाब था तू मेरे सामने फिल्म इन डर का वो गाना।

0: अंतरा।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: हर पल मुझको तड़पाता है, मुझे सारी रात जगाता है। हर पल मुझको तड़पाता है, मुझे सारी रात जगाता है। इस बात की तुमको खबर नहीं, ये सिर्फ तुम ही पे मरता है।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो

भाई मेरे पास सबसे पहले मैसेज आया हुआ है वो है जाकिर खान जी का, और यानी कि बिंदिया जी का, और नाहिद जी का, और पूजा भास्कर जी का, रवि मोहन जी का, मिनेश जी का, अर्जय रत्ना जी का, अंचल कुमार जी का, एंड सुनीता गोप जी का, संगीता अम्बरकर जी का, और मतलब बहुत से दोस्तों का है। तो फिलहाल सीधे कॉल लगाते हैं जाकिर जी को।

0: जाकिर खान जी बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतरा मस्ती में। ओ माई गॉड, बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, और कैसे हैं?
1: ठीक ठाक हैं।
0: और क्या कर रहे हैं जनाबे अली?
1: काम कर रहे हैं।
0: काम करते करते सुन रहे हैं ना
1: जी।
0: बताइए, जवाब बता दीजिए गाने का।
1: जवाब, मेरा दिल भी कितना पागल है, साजन मूवी।
0: सही बात है। और गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: गाना तो यही सुना दी, बहुत अच्छा गाना है,
0: यही सुना दे। सुनवा दिया, इंजॉय
1: कीजिए सर। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी। सच में बहुत डरता है।

0: और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: कौन अपना है, क्या बेगाना है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ये जमाने में किसने जाना है। तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है।
0: सही बात।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
0: है, क्या

0: से।
1: और मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है किनका, ज्योति खटवड़े जी का। अच्छा, ओ माय गॉड, और रवि मोहड़े जी बहुत बहुत नजदीक पहुंच गए हैं नंबर दो पे। थर्ड पे नाही जी हैं, और महक जी हैं, और सुनील कुमार जी हैं, रूपचंद जी हैं, आरजे रत्ना जी हैं, पूजा भास्कर जी, संगीता अमरकर जी, प्रमोद कुमार जी हैं, जाकिर खान जी हैं, सरबजीत सेठी जी, भारती पटेल जी, सुनीता गोप जी, एंड यानी हमारे वो कमल जी हैं, गजल, मतलब बहुत से दोस्त हैं। तो ओके जी, फिलहाल मैं यहाँ पे ज्योति जी का गाना मैं प्ले कर रहा हूँ।

0: और यहाँ सुनवा रहा हूँ अगला अंतरा।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू। तू किसी और की होना जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो।

0: देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो
1: ए टोनी फर्नांडिस बेबी

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: तेरे दिल में मैं।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया, और क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो आई गो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

हो चकाचक फिर लो पान चबा। आहा।